0: गले तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को भगवान की बात है। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सरस्वती रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। सोने की राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ
1: राधा के रूप में आते हुए लाजना है, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ली। हंसू नहीं, हंसू नहीं, संसार का भार उठा लो कि देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा।

जो कुछ कर रहा ठीक कर रहा है। वंदना की बेटी नहीं, अरे गांव की बेटी, अब मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। पकड़ लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं, मेरा बच्चों ऐसा ही कर रहा है।

0: मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे, मेरे बच्चे भूखे।
1: समझ गया, समझ गया। गले तो क्या, पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को, भगवान की बात है। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ
0: राधा के रूप में आते हुए लाजना है, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ले। हंसो नहीं, हंसो नहीं, संसार का भार उठा लो कि देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा।

0: सुन, जो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है।
1: पंडाला की ही बेटी नहीं, गांव की बेटी, अब मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। पकड़ लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं, मेरा बच्चू ऐसा ही करेगा, मेरा बच्चू ऐसा ही करेगा।